0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।
3: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
2: शनिवार 27 जून को नए सिनट हॉल से पोप लियो 14वें ने एक बड़ा भाषण दिया। वैटिकन सिटी में 26 से 27 जून 2026 को आयोजित असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें ने कार्डिनलों के प्रति आभार व्यक्त किया। कैथोलिक कलीसिया में कंसिस्ट्री वह औपचारिक सभा है जिसमें पोप और कार्डिनल मंडल के सदस्य भाग लेते हैं। इस सभा में कलीसिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे नए कार्डिनलों की नियुक्ति की घोषणा, कलीसिया के महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श और विशेष अवसरों पर सलाह मशविरा। विगत दिनों की कंसिस्ट्री एक असाधारण कंसिस्ट्री थी जिसमें पोप लियो 14वें ने कलीसिया के आंतरिक जीवन पर ध्यान देने के बजाय कार्डिनलों को दुनिया को देखने और यही सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया। आज हम अपनी कलीसियाओं को अधिक ईमानदारी, स्वतंत्रता एवं भरोसे के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में कैसे मदद कर सकते हैं? पोप ने अपने भाषण में उपस्थित कार्डिनलों को संबोधित करते हुए कहा, अब इन दिनों के अंत में हम अत्यंत शुक्रगुजार हैं। मैं आपको उस स्वतंत्रता, भाईचारे एवं कलीसियाई भावना के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके साथ आपने हमारे काम में हिस्सा लिया। मैं न सिर्फ आपके विचारों की बातें अपने साथ रखता हूँ, बल्कि उस अनुभव को भी जिससे ये संभव हुआ। इन दिनों हमने मिलकर प्रभु की इच्छा खोजी, इस यकीन के साथ कि ख्रिस्त अपनी कलीसिया में काम करना जारी रखते हैं। वे ही हमसे पहले आते, हमें एकत्रित करते, हमारे भाइयों और बहनों के माध्यम से बोलते और हमें हमारे मिशन पर ले जाते हैं। सब कुछ उन्हीं से आता है और सब कुछ उन्हीं के पास लौटता है। इसलिए इतने अलग अलग कलीसियाओं, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के कार्डिनलों को एक दूसरे की बात सुनते एवं मिलकर यह खोजते देखना कि सुसमाचार के लिए सबसे अच्छा क्या है, मेरे लिए तसल्ली एवं उम्मीद का स्रोत रहा है।
3: Abbiamo iniziato questi giorni lasciandoci guidare dall'immagine del buon samaritano.
2: हमने इन दिनों की शुरुआत भले समारी की छवि से की थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घायल भाई के सामने से गुजरते हुए दया से भरकर उसकी देखभाल करता है। अब अंत में सुसमाचार की और एक छवि के साथ समाप्त करना चाहूँगा, वह है एमाउस के शिष्यों की। वे भी दुख एवं निराशा से भरी यात्रा करते हैं, लेकिन प्रभु यात्रा में उनके साथी बन जाते, उनके सवालों को सुनते, धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते, उनके दिलों को प्रज्वलित करते और उनकी यात्रा को बदल देते हैं। संत पापा ने कहा, मुझे लगता है कि इन दिनों हमने जो अनुभव किया उसमें भी ऐसा ही अनुभव रहा।
3: Abbiamo camminato insieme, ci siamo ascoltati reciprocamente.
2: हम साथ साथ चले, हमने एक दूसरे की बात सुनी और यदि हमने प्रभु के लिए जगह बनाई तो उन्होंने हमारे दिलों में उम्मीद जगाई। और अब हमें एक नए नजरिए के साथ यात्रा फिर से शुरू करने के लिए हमारी कलीसियाओं में वापस भेजते हैं। पोप ने कहा, सिनोडल यात्रा पर अंतिम चिंतन ने हमें इन दिनों में जो अनुभव हुआ है उस पर फिर से सोचने में मदद की। मुझे लगता है कि सिनोडलिटी का सवाल मुख्य रूप से यह नहीं है कि फैसला करने की ताकत किसके पास है, बल्कि अधिक गहरा सवाल है कि हम मिलकर उस वरदान की रक्षा कैसे करें जो प्रभु ने अपनी कलीसिया को सौंपी है। जब यह सवाल हमारी समझ का केंद्र बनता है तो अधिकार, साझा जिम्मेदारी और फैसलों के मुद्दे भी अपनी सही जगह पाते हैं, जो मिशन और सुसमाचार के प्रति साझा वफादारी से रोशन होते हैं। इसलिए पोप ने कहा, मैं एक बार फिर आपको सिनेट को लागू करने का सफर सौंपना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जिन कलीसियाओं की सेवा करते हैं उनमें पूरे भरोसे के साथ शामिल हों, सच्ची समझ को बढ़ावा दें और सभी को सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करें। यह हमारी कलीसियाओं को अधिक सुसमाचारी तरीके से बढ़ने में मदद करेगी। पोप ने कार्डिनलों से कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि हमने कार्डिनल ग्रेट से सुना, कि सिनोडालिटी सिर्फ एक साधारण सभा नहीं है, ना ही काम करने का कोई तरीका या एक आध्यात्मिक तरीका है। यह मिलने जुलने से उत्पन्न होता है, सुनने से बढ़ता और आत्मपरक से परिपक्व होता है। असली सवाल यह नहीं है कि हम कितनी सभाएं आयोजित कर सकते हैं, बल्कि यह कि हमारी सभाओं में क्या सुसमाचारी सद्गुण होगी। जब हम एक दूसरे को विनम्रता और स्वतंत्रता से सुनते हैं, आत्मा के लिए जगह बनाते, तो हमारी बातचीत सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं रहती, बल्कि मन परिवर्तन की जगह बन जाती है, जहां हम प्रभु के प्रति वफादारी में एक साथ बढ़ते हैं। कंसिस्ट्री पर लौटते हुए पोप ने कहा, इन दिनों की बातचीत पर चिंतन करते हुए मैं सबसे पहले उस दृष्टिकोण को लेता हूँ जिससे आपने पहले सत्र में दुनिया को देखा। आप में से कई ने युद्ध, हिंसा, गरीबी और लोगों के जीवन में कई प्रकार के अन्याय के कारण होने वाले दुख के बारे बात की, लेकिन आपने उनके बारे में बताना बंद नहीं किया। इन दुखद घटनाओं के पीछे आपने एक और भी गहरी पीड़ा को पहचाना, अकेलापन, रिश्तों का संकट, उम्मीद का खत्म होना, एक दूसरे को भाई बहन के रूप में पहचानने में कठिनाई। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दुनिया के जख्मों से मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि उनकी जड़ों को खोजती है। अक्सर उनके अंदर छिपी हुई अर्थ, सच्चाई, आध्यात्मिकता और समुदाय की एक नई इच्छा को पहचानती है। आज कई लोग उम्मीद एवं सच्चे रिश्तों की तलाश कर रहे हैं। पोप ने आगे कहा, जिस तरह आपने युवाओं के बारे में बात की, उससे मैं खास रूप से प्रभावित हुआ। उनके सवालों में, लेकिन उन तकलीफों में भी, जो कभी कभी उन्हें निराशा की ओर ले जाती हैं और कभी कभी आत्महत्या करने तक भी। आपने हमारे समय के सबसे गहरे घाव में से एक को पहचाना, लेकिन आपने आत्मा के काम को भी पहचाना। असलियत सच्चे रिश्तों और अर्थ की उनकी खोज हमें याद दिलाती है कि सुसमाचार मानव के दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। उनकी और उनके परिवारों की विनम्रता से सुनना भी प्रभु के लिए कलीसिया को बदलने का तरीका है। आप में से कई लोगों ने परिवार का भी जिक्र किया। जहाँ परिवार को समर्थन और साथ मिलता है, वहाँ यह रिश्तों, एकजुटता और उम्मीद का एक स्कूल बनता है, और जहाँ इसे चोट पहुँचती या अकेला छोड़ दिया जाता, वहाँ पूरा समाज इसका परिणाम भुगतता है। संत पापा ने जानकारी देते हुए कहा, अक्टूबर में हम पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग करेंगे, ताकि अमोरिस लेतित्सिया के बाद उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कर सकें। कुछ परिवार भी अपने अनुभव साझा करने के लिए इसमें हिस्सा लेंगे। उनका होना जरूरी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग आएंगे वे ध्यान से सुनेंगे और अपनी कलीसियाओं के परिवारों के अनुभव लेकर आएंगे। इस तरह आपने यह सुनने की कोशिश की कि दुनिया के घाव मानव के दिल के बारे में क्या बताते हैं। इसी हृदय में शांति का निर्णय भी होता है। इतिहास में प्रकट होने से पहले युद्ध हमारे भीतर जन्म लेता है, जब संदेह विश्वास की और आशा डर की जगह लेता है और दूसरे व्यक्ति को खतरा माना जाता है। लेकिन इसी हृदय में मसीह हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते और हमें परिवर्तित कर देते हैं। एक सुलझे हुए दिल से कोमल शब्द, नए रिश्ते और लोगों तक पहुँचने में सक्षम शांति पैदा हो सकती है। दूसरे सत्र ने हमें एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मनिफिका हुमानितास के अंतर्ज्ञान में से एक को बड़ी स्पष्टता से समझ लिया है। युद्ध केवल राज्यों के बीच एक संघर्ष नहीं है, इसका जन्म बहुत पहले हो चुका है। सत्ता की संस्कृति से जो हमारे सोचने के तरीके, रिश्तों का अनुभव करने, शांति का प्रयोग करने, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और यहाँ तक कि धर्म का प्रयोग करने के तरीके से भी, यदि यह संकट की जड़ है तो इसका जवाब देने के लिए सहयोग और संवाद की संस्कृति के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस तरह पोप ने सभी को उनकी जिम्मेदारियों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए इस कंसिस्ट्री के परिणामों को कलीसिया की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया, ताकि वे हमें अलग अलग चीज़ों में एकता बनाए रखना और शांति के सुसमाचार की सेवा विनम्रता, हिम्मत और उम्मीद के साथ करना सिखाएं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें का संदेश सुना। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने मोनसिन्योर लुचियो रुइस को, जो अब तक वाटिकन संचार विभाग के सचिव थे, परम धर्म पीठीय उदार सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया है। यह संस्था संत पापा के उदार कार्यों और मानवीय परियोजना के लिए जिम्मेदार है। 30 जून को घोषित यह नियुक्ति रोमन कुरिया के हाल ही में हुए कई बदलावों के बीच आया है। संचार विभाग और उदार सेवा विभाग दोनों को हाल ही में नए प्रीफेक्ट मिले हैं। लोकधर्मी मोनसेरात अल्वार्डो को 2 जून को संचार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया और वे नवंबर में पदभार संभालेंगी, जबकि स्पेन के अगुस्टीनियन धर्माध्यक्ष लुइस मारिन डे सान मार्टिन मार्च महीने से उदार सेवा विभाग के प्रीफेक्ट हैं। 1 सितंबर से मोनसिन्योर रुइस धर्माध्यक्ष मारिन डे सान मार्टिन के साथ काम करेंगे। वे संचार विभाग के काम में तब से शामिल रहे हैं जब इसे संचार के लिए सचिवालय के नाम से जाना जाता था। संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें 27 जून 2015 को सचिव नियुक्त किया था, खासकर लैटिन अमेरिका में संचार और मीडिया के कई सालों के अनुभव के बाद, जहां उन्होंने लैटिन अमेरिकन कलीसिया के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के सलाहकार और ग्वादालूपे की माता मरियम प्रशिक्षण और विकास केंद्र के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। घोषणा के तुरंत बाद संचार विभाग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मोनसिन्योर रुइस ने कहा कि वे प्रभु के पीछे चलने में खुश हैं, चाहे वह हमें कहीं भी बुलाएं। उन्होंने साथ काम करने में बिताए सालों के लिए शुक्रिया अदा किया और किसी भी मुश्किल के लिए माफी मांगी, खासकर विभाग बनाने के शुरुआती दौर में। उधर काराकास में सानहो से पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लुइस ग्रासिया वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों को हो रही मुश्किलों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि संत पापा लियो 14वें के शब्द हम सभी के लिए हिम्मत का एक बड़ा जरिया है। सोमवार 29 जून की सुबह पल्ली पुरोहित फादर लुइस ग्रासिया के साथ यह साक्षात्कार शुरू हो ही रही थी कि एक और तेज भूकंप आया। उन्होंने कहा, काराकास में अभी एक और झटका लगा है। वे अभी भी 24 जून के भूकंप की यादों से हिले हुए हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। फादर लुइस ने वाटिकन न्यूज को बताया, एक तरफ स्थिति सच में दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने न्यूज में देखा है, ला गुएरा में तबाही बहुत भयानक हो रही है। इसे 1999 की भूकंप से भी बुरा कहा जा सकता है। यहाँ काराकास में भी इसका असर बहुत ज्यादा महसूस किया गया है। कई लोगों के घर अब असुरक्षित हो गए हैं, दूसरों की जानें चली गई हैं और हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। संत पापा लियो 14वें द्वारा व्यक्त की गई प्रार्थना और एकजुटता पर विचार करते हुए फादर ग्रासिया ने कहा कि वे हम सभी के लिए हिम्मत का एक बड़ा जरिया रहे हैं। इस आपदा के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्होंने सच में साथ महसूस किया है और वे बहुत आभारी हैं। उधर नाइजीरिया के उत्तर पूर्व बोर्नो राज्य के लासा शहर में एक माध्यमिक स्कूल पर हथियारों से लैस हमले के बाद कम से कम 36 छात्र और स्कूल के एक कर्मचारी अपहरण कर लिए गए। खबर है कि यह हमला सोमवार सुबह हुआ जब छात्र अपनी वार्षिक परीक्षा दे रहे थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 25 लड़कियां और 11 लड़के और एक कर्मचारी को अपहरण कर लिया गया, जबकि स्कूल के वाइस प्रिंसिपल समेत 8 और लोगों को छोड़ दिया गया। बोर्नो राज्य के गवर्नर बबगाना जुमुलू ने मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा है। उधर कतर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा में हैं, लेकिन संपर्कों की प्रकृति के बारे में वाशिंगटन और तेहरान के परस्पर विरोधी बयानों के बावजूद वे ईरानी अधिकारियों से नहीं मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशेष दूत हाल ही में हस्ताक्षरित अमेरिकी ईरान समझौता ज्ञापन की समीक्षा के लिए केवल मध्यस्थों से मिलेंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एमओयू के तहत जब्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अभी तक तेहरान को हस्तांतरित नहीं की गई है। वाशिंगटन ने दोहा वार्ता को एमओयू के पालन का हिस्सा बताया। ईरान ने किसी भी सीधी बातचीत की योजना से इनकार किया है। दूसरे इलाके के घटनाक्रम में हमास ने कहा कि उसका प्रतिनिधि मंडल इसराइल के साथ युद्ध विराम समझौता को फाइनल करने के लिए मंगलवार को काहिरा पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का मिस्र के अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नाजुक युद्ध विराम में तनाव बना हुआ है, जिसमें निरस्त्रीकरण और पुनर्निर्माण प्रावधान अभी भी बाकी है, और लेबनान में हाल ही में हस्ताक्षर किए गए फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद सोमवार को दक्षिण में इजरायली हमले जारी रहे। लेबनान के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 2 मार्च से हुए हमलों में 4,257 लोग मारे गए हैं। उधर युद्ध, बड़े पैमाने पर विस्थापन और भूख ने सूडान को दुनिया का सबसे गंभीर मानवीय संकट बना दिया है। कल सूडानी सरकार ने पश्चिम कोर्डोफान राज्य में हैजा फैलने की घोषणा की। देश के अंदर विस्थापित लगभग 7 मिलियन लोग, 4 मिलियन से ज्यादा विदेश में शरणार्थी, 50,000 से ज्यादा मौतें, यही वह युद्ध है जिसका उन्होंने जिक्र किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हैजा से 117 मौतें और 838 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि चल रहे संघर्ष से बीमारी और फैल रही है और स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है। विस्थापन और असुरक्षा इलाज और मानवीय मदद पहुंचाने में रुकावट डाल रही है। यूएन एजेंसी जमीनी स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इलाज केंद्र बढ़ा रही है, दवाइयां बांट रही है और प्रभावित समुदायों में पानी के क्लोरीनेशन और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे बचाव के उपायों को बढ़ावा दे रही है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।
3: Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
2: शनिवार 27 जून को नए सिनड हॉल से पोप लियो 14वें ने एक बड़ा भाषण दिया। वैटिकन सिटी में 26 से 27 जून 2026 को आयोजित असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें ने कार्डिनलों के प्रति आभार व्यक्त किया। कैथोलिक कलीसिया में कंसिस्ट्री वह औपचारिक सभा है जिसमें पोप और कार्डिनल मंडल के सदस्य भाग लेते हैं। इस सभा में कलीसिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे नए कार्डिनलों की नियुक्ति की घोषणा, कलीसिया के महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श और विशेष अवसरों पर सलाह मशविरा। विगत दिनों की कंसिस्ट्री एक असाधारण कंसिस्ट्री थी, जिसमें पोप लियो 14वें ने कलीसिया के आंतरिक जीवन पर ध्यान देने के बजाय कार्डिनलों को दुनिया को देखने और यही सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया। आज हम अपनी कलीसियाओं को अधिक ईमानदारी, स्वतंत्रता एवं भरोसे के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में कैसे मदद कर सकते हैं? पोप ने अपने भाषण में उपस्थित कार्डिनलों को संबोधित करते हुए कहा, अब इन दिनों के अंत में हम अत्यंत शुक्रगुजार हैं। मैं आपको उस स्वतंत्रता, भाईचारे एवं कलीसियाई भावना के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके साथ आपने हमारे काम में हिस्सा लिया। मैं न सिर्फ आपके विचारों की बातें अपने साथ रखता हूँ, बल्कि उस अनुभव को भी जिससे ये संभव हुआ। इन दिनों हमने मिलकर प्रभु की इच्छा खोजी, इस यकीन के साथ कि ख्रिस्त अपनी कलीसिया में काम करना जारी रखते हैं। वे ही हमसे पहले आते, हमें एकत्रित करते, हमारे भाइयों और बहनों के माध्यम से बोलते और हमें हमारे मिशन पर ले जाते हैं। सब कुछ उन्हीं से आता है और सब कुछ उन्हीं के पास लौटता है। इसलिए इतने अलग अलग कलीसियाओं, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के कार्डिनलों को एक दूसरे की बात सुनते एवं मिलकर यह खोजते देखना कि सुसमाचार के लिए सबसे अच्छा क्या है, मेरे लिए तसल्ली एवं उम्मीद का स्रोत रहा है।
3: Abbiamo iniziato questi giorni lasciandoci guidare dall'immagine del buon samaritano.
2: हमने इन दिनों की शुरुआत भले समारी की छवि से की थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घायल भाई के सामने से गुजरते हुए दया से भरकर उसकी देखभाल करता है। अब अंत में सुसमाचार की और एक छवि के साथ समाप्त करना चाहूँगा, वह है एमाउस के शिष्यों की। वे भी दुख एवं निराशा से भरी यात्रा करते हैं, लेकिन प्रभु यात्रा में उनके साथी बन जाते, उनके सवालों को सुनते, धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते, उनके दिलों को प्रज्वलित करते और उनकी यात्रा को बदल देते हैं। संत पापा ने कहा, मुझे लगता है कि इन दिनों हमने जो अनुभव किया उसमें भी ऐसा ही अनुभव रहा।
3: Abbiamo camminato insieme, ci siamo ascoltati reciprocamente.
2: हम साथ साथ चले, हमने एक दूसरे की बात सुनी और यदि हमने प्रभु के लिए जगह बनाई तो उन्होंने हमारे दिलों में उम्मीद जगाई और अब हमें एक नए नजरिए के साथ यात्रा फिर से शुरू करने के लिए हमारी कलीसियाओं में वापस भेजते हैं। पोप ने कहा, सिनोडल यात्रा पर अंतिम चिंतन ने हमें इन दिनों में जो अनुभव हुआ है उस पर फिर से सोचने में मदद की। मुझे लगता है कि सिनोडलिटी का सवाल मुख्य रूप से यह नहीं है कि फैसला करने की ताकत किसके पास है, बल्कि अधिक गहरा सवाल है कि हम मिलकर उस वरदान की रक्षा कैसे करें जो प्रभु ने अपनी कलीसिया को सौंपी है। जब यह सवाल हमारी समझ का केंद्र बनता है तो अधिकार, साझा जिम्मेदारी और फैसलों के मुद्दे भी अपनी सही जगह पाते हैं, जो मिशन और सुसमाचार के प्रति साझा वफादारी से रोशन होते हैं। इसलिए पोप ने कहा, मैं एक बार फिर आपको सिनेट को लागू करने का सफर सौंपना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जिन कलीसियाओं की सेवा करते हैं उनमें पूरे भरोसे के साथ शामिल हों, सच्ची समझ को बढ़ावा दें और सभी को सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करें। यह हमारी कलीसियाओं को अधिक सुसमाचारी तरीके से बढ़ने में मदद करेगी। पोप ने कार्डिनलों से कहा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि हमने कार्डिनल ग्रेट से सुना, कि सिनोडालिटी सिर्फ एक साधारण सभा नहीं है, ना ही काम करने का कोई तरीका या एक आध्यात्मिक तरीका है। यह मिलने जुलने से उत्पन्न होता है, सुनने से बढ़ता और आत्मपरक से परिपक्व होता है। असली सवाल यह नहीं है कि हम कितनी सभाएं आयोजित कर सकते हैं, बल्कि यह कि हमारी सभाओं में क्या सुसमाचारी सद्गुण होगी। जब हम एक दूसरे को विनम्रता और स्वतंत्रता से सुनते हैं, आत्मा के लिए जगह बनाते, तो हमारी बातचीत सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं रहती, बल्कि मन परिवर्तन की जगह बन जाती है, जहां हम प्रभु के प्रति वफादारी में एक साथ बढ़ते हैं। कंसिस्ट्री पर लौटते हुए पोप ने कहा, इन दिनों की बातचीत पर चिंतन करते हुए मैं सबसे पहले उस दृष्टिकोण को लेता हूँ जिससे आपने पहले सत्र में दुनिया को देखा। आप में से कई ने युद्ध, हिंसा, गरीबी और लोगों के जीवन में कई प्रकार के अन्याय के कारण होने वाले दुख के बारे बात की, लेकिन आपने उनके बारे में बताना बंद नहीं किया। इन दुखद घटनाओं के पीछे आपने एक और भी गहरी पीड़ा को पहचाना, अकेलापन, रिश्तों का संकट, उम्मीद का खत्म होना, एक दूसरे को भाई बहन के रूप में पहचानने में कठिनाई। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दुनिया के जख्मों से मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि उनकी जड़ों को खोजती है। अक्सर उनके अंदर छिपी हुई अर्थ, सच्चाई, आध्यात्मिकता और समुदाय की एक नई इच्छा को पहचानती है। आज कई लोग उम्मीद एवं सच्चे रिश्तों की तलाश कर रहे हैं। पोप ने आगे कहा, जिस तरह आपने युवाओं के बारे में बात की, उससे मैं खास रूप से प्रभावित हुआ, उनके सवालों में, लेकिन उन तकलीफों में भी जो कभी कभी उन्हें निराशा की ओर ले जाती हैं और कभी कभी आत्महत्या करने तक भी। आपने हमारे समय के सबसे गहरे घाव में से एक को पहचाना, लेकिन आपने आत्मा के काम को भी पहचाना। असलियत सच्चे रिश्तों और अर्थ की उनकी खोज हमें याद दिलाती है कि सुसमाचार मानव के दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। उनकी और उनके परिवारों की विनम्रता से सुनना भी प्रभु के लिए कलीसिया को बदलने का तरीका है। आप में से कई लोगों ने परिवार का भी जिक्र किया। जहाँ परिवार को समर्थन और साथ मिलता है, वहाँ यह रिश्तों, एकजुटता और उम्मीद का एक स्कूल बनता है, और जहाँ इसे चोट पहुँचती या अकेला छोड़ दिया जाता, वहाँ पूरा समाज इसका परिणाम भुगतता है। संत पापा ने जानकारी देते हुए कहा, अक्टूबर में हम पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग करेंगे, ताकि अमोरिस लेतित्सिया के बाद उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कर सकें। कुछ परिवार भी अपने अनुभव साझा करने के लिए इसमें हिस्सा लेंगे, उनका होना जरूरी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग आएंगे वे ध्यान से सुनेंगे और अपनी कलीसियाओं के परिवारों के अनुभव लेकर आएंगे। इस तरह आपने यह सुनने की कोशिश की कि दुनिया के घाव मानव के दिल के बारे में क्या बताते हैं। इसी हृदय में शांति का निर्णय भी होता है। इतिहास में प्रकट होने से पहले युद्ध हमारे भीतर जन्म लेता है, जब संदेह विश्वास की और आशा डर की जगह लेता है और दूसरे व्यक्ति को खतरा माना जाता है। लेकिन इसी हृदय में मसीह हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते और हमें परिवर्तित कर देते हैं। एक सुलझे हुए दिल से कोमल शब्द, नए रिश्ते और लोगों तक पहुँचने में सक्षम शांति पैदा हो सकती है। दूसरे सत्र ने हमें एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मनिफिका हुमानितास के अंतर्ज्ञान में से एक को बड़ी स्पष्टता से समझ लिया है। युद्ध केवल राज्यों के बीच एक संघर्ष नहीं है, इसका जन्म बहुत पहले हो चुका है। सत्ता की संस्कृति से, जो हमारे सोचने के तरीके, रिश्तों का अनुभव करने, शांति का प्रयोग करने, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और यहाँ तक कि धर्म का प्रयोग करने के तरीके से भी, यदि यह संकट की जड़ है तो इसका जवाब देने के लिए सहयोग और संवाद की संस्कृति के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इस तरह पोप ने सभी को उनकी जिम्मेदारियों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए इस कंसिस्ट्री के परिणामों को कलीसिया की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सिपोर्ट किया, ताकि वे हमें अलग अलग चीज़ों में एकता बनाए रखना और शांति के सुसमाचार की सेवा विनम्रता, हिम्मत और उम्मीद के साथ करना सिखाएं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने असाधारण कंसिस्ट्री के समापन पर पोप लियो 14वें का संदेश सुना। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने मोनसिन्योर लूचियो रुइस को, जो अब तक वाटिकन संचार विभाग के सचिव थे, परम धर्म पीठीय उदार सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया है। यह संस्था संत पापा के उदार कार्यों और मानवीय परियोजना के लिए जिम्मेदार है। 30 जून को घोषित यह नियुक्ति रोमन कुरिया के हाल ही में हुए कई बदलावों के बीच आया है। संचार विभाग और उदार सेवा विभाग दोनों को हाल ही में नए प्रीफेक्ट मिले हैं। लोकधर्मी मोनसेरात अल्वार्डो को 2 जून को संचार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया और वे नवंबर में पदभार संभालेंगी, जबकि स्पेन के अगुस्टीनियन धर्माध्यक्ष लुइस मारिन डे सान मार्टिन मार्च महीने से उदार सेवा विभाग के प्रीफेक्ट हैं। 1 सितंबर से मोनसिन्योर रुइस धर्माध्यक्ष मारिन डे सान मार्टिन के साथ काम करेंगे। वे संचार विभाग के काम में तब से शामिल रहे हैं जब इसे संचार के लिए सचिवालय के नाम से जाना जाता था। संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें 27 जून 2015 को सचिव नियुक्त किया था, खासकर लैटिन अमेरिका में संचार और मीडिया के कई सालों के अनुभव के बाद, जहां उन्होंने लैटिन अमेरिकन कलीसिया के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के सलाहकार और ग्वादालूपे की माता मरियम प्रशिक्षण और विकास केंद्र के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। घोषणा के तुरंत बाद संचार विभाग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मोनसिन्योर रुइस ने कहा कि वे प्रभु के पीछे चलने में खुश हैं, चाहे वह हमें कहीं भी बुलाएं। उन्होंने साथ काम करने में बिताए सालों के लिए शुक्रिया अदा किया और किसी भी मुश्किल के लिए माफी मांगी, खासकर विभाग बनाने के शुरुआती दौर में। उधर काराकास में सानहो से पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लुइस ग्रासिया वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों को हो रही मुश्किलों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि संत पापा लियो 14वें के शब्द हम सभी के लिए हिम्मत का एक बड़ा जरिया है। सोमवार 29 जून की सुबह पल्ली पुरोहित फादर लुइस ग्रासिया के साथ यह साक्षात्कार शुरू हो ही रही थी कि एक और तेज भूकंप आया। उन्होंने कहा, काराकास में अभी एक और झटका लगा है। वे अभी भी 24 जून के भूकंप की यादों से हिले हुए हैं, जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। फादर लुइस ने वाटिकन न्यूज को बताया, एक तरफ स्थिति सच में दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने न्यूज में देखा है, ला गुएरा में तबाही बहुत भयानक हो रही है। इसे 1999 की भूकंप से भी बुरा कहा जा सकता है। यहाँ काराकास में भी इसका असर बहुत ज्यादा महसूस किया गया है। कई लोगों के घर अब असुरक्षित हो गए हैं, दूसरों की जानें चली गई हैं और हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। संत पापा लियो 14वें द्वारा व्यक्त की गई प्रार्थना और एकजुटता पर विचार करते हुए फादर ग्रासिया ने कहा कि वे हम सभी के लिए हिम्मत का एक बड़ा जरिया रहे हैं। इस आपदा के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्होंने सच में साथ महसूस किया है और वे बहुत आभारी हैं। उधर नाइजीरिया के उत्तर पूर्व बोर्नो राज्य के लासा शहर में एक माध्यमिक स्कूल पर हथियारों से लैस हमले के बाद कम से कम 36 छात्र और स्कूल के एक कर्मचारी अपहरण कर लिए गए। खबर है कि यह हमला सोमवार सुबह हुआ जब छात्र अपनी वार्षिक परीक्षा दे रहे थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 25 लड़कियां और 11 लड़के और एक कर्मचारी को अपहरण कर लिया गया, जबकि स्कूल के वाइस प्रिंसिपल समेत 8 और लोगों को छोड़ दिया गया। बोर्नो राज्य के गवर्नर बबगाना जुमुलू ने मौके पर एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा है। उधर कतर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा में हैं, लेकिन संपर्कों की प्रकृति के बारे में वाशिंगटन और तेहरान के परस्पर विरोधी बयानों के बावजूद वे ईरानी अधिकारियों से नहीं मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशेष दूत हाल ही में हस्ताक्षरित अमेरिकी ईरान समझौता ज्ञापन की समीक्षा के लिए केवल मध्यस्थों से मिलेंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एमओयू के तहत जब्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अभी तक तेहरान को हस्तांतरित नहीं की गई है। वाशिंगटन ने दोहा वार्ता को एमओयू के पालन का हिस्सा बताया। ईरान ने किसी भी सीधी बातचीत की योजना से इनकार किया है। दूसरे इलाके के घटनाक्रम में हमास ने कहा कि उसका प्रतिनिधि मंडल इसराइल के साथ युद्ध विराम समझौता को फाइनल करने के लिए मंगलवार को काहिरा पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का मिस्र के अधिकारियों से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नाजुक युद्ध विराम में तनाव बना हुआ है, जिसमें निरस्त्रीकरण और पुनर्निर्माण प्रावधान अभी भी बाकी है, और लेबनान में हाल ही में हस्ताक्षर किए गए फ्रेमवर्क समझौते के बावजूद सोमवार को दक्षिण में इजरायली हमले जारी रहे। लेबनान के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 2 मार्च से हुए हमलों में 4,257 लोग मारे गए हैं। उधर युद्ध, बड़े पैमाने पर विस्थापन और भूख ने सूडान को दुनिया का सबसे गंभीर मानवीय संकट बना दिया है। कल सूडानी सरकार ने पश्चिम कोर्डोफान राज्य में हैजा फैलने की घोषणा की। देश के अंदर विस्थापित लगभग 7 मिलियन लोग, 4 मिलियन से ज्यादा विदेश में शरणार्थी, 50,000 से ज्यादा मौतें, यही वह युद्ध है जिसका उन्होंने जिक्र किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हैजा से 117 मौतें और 838 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि चल रहे संघर्ष से बीमारी और फैल रही है और स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है। विस्थापन और असुरक्षा इलाज और मानवीय मदद पहुंचाने में रुकावट डाल रही है। यूएन एजेंसी जमीनी स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इलाज केंद्र बढ़ा रही है, दवाइयां बांट रही है और प्रभावित समुदायों में पानी के क्लोरीनेशन और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे बचाव के उपायों को बढ़ावा दे रही है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: अमृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रीस्त दया कर,
1: ख्रीस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रीस्त हमारी सुन,
1: ख्रीस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रीस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा। मंदिर से जाने के बाद लोगों ने उनका आचरण भुला दिया। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य इसलिए अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं यह जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा। वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 9 से लेकर 13 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। वस्तुतः उपदेशक ग्रंथ के उक्त पद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सत्ता या ताकत का अनुचित लाभ उठाने वालों को ये पद फटकार बताते हैं। फिर यह प्रकाशित करते हैं कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने के कारण ही हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब दुष्ट को कुछ समय के लिए सजा नहीं मिलती तो बुराई करने की उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। आज भी यह कोई नई बात नहीं है। कई स्थलों पर, विशेष रूप से सरकारी दफ्तरों में, यही देखने को मिलता है। आज भी विश्व के कई हिस्सों में शासक मनमानी कर रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। श्रोताओं, किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही एवं न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिलता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला माना जाता है। इसके विपरीत भले व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। वे उन ताकतवरों के राज में दुख उठाते हैं जो उन पर अधिकार जताते हैं। सताने वाले अपनी नफरत में और मजबूत होते जाते हैं, जबकि भले लोग दूसरों की दृष्टि में और नीचे गिर जाते हैं। अस्तु श्रोताओं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सुलेमान ने इस ना इंसाफी को व्यर्थ निरूपित किया। तथापि इसके बावजूद वह भरोसा दिलाता है। 8वें अध्याय के 13वें पद में कहता है, ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं।

तदुपरांत आठवें अध्याय के 14वें एवं 15वें पदों में उपदेशक कहता है, पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है, कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भोगना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। मैं कह चुका हूं यह भी व्यर्थ है, इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद के साथ रहे। श्रोताओ, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां राजा सुलेमान अनंत के दृष्टिकोण को भूल चुका था, या फिर अनंत में उसका विश्वास नहीं था। और फिर जिसे अनंत पर विश्वास नहीं, जिसे यह भरोसा नहीं कि धरती पर हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। और इसी पर विलाप करता है कि इस दुनिया के स्त्री पुरुषों को कष्ट क्यों कर भोगना पड़ता है। श्रोताओ, यह सवाल बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित अय्यूब के ग्रंथ का सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब लगभग नामुमकिन था। इसका जवाब तो बस उन्हीं को मिल सकता है जो अनंत जीवन में विश्वास करते हुए इस जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार निभाते हैं। उपदेशक यह भी कहता है कि कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। सवाल करता है कि बुरे कर्म करने वाले खुश क्यों रहते हैं, उन पर आशीर्वाद क्यों बरसता रहता है, नाकाबिल लोगों के साथ अच्छाई क्यों दिखाई जाती है। और इन्हीं सवालों की मजबूती उसे यह कहने पर मजबूर कर देती है कि जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। अस्तु परामर्श देता है कि जिंदगी के बुरे हालातों का भी मनुष्य सदुपयोग करे, परिश्रम करे और जीवन का आनंद उठाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। किंतु श्रोताओ, उपदेशक भूल गया था कि ऐसे सवालों का जवाब ईश्वर की दया पर निर्भर रहता है। ईश्वर दया सागर हैं, वे पापियों का बहिष्कार नहीं करते, बल्कि उन्हें पुनः सत्य के रास्ते पर लौट आने का मौका देते हैं। आगे आठवें अध्याय के अंतिम यानी कि 16वें पद में उपदेशक कहता है, जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया, तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे, किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में बिल्कुल असमर्थ है। श्रोताओ, जिंदगी की बहुत अधिक भागदौड़ हमें यह पूछने पर मजबूर कर देती है कि यह भागदौड़ हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या मतलब है और इसका कोई मतलब है भी या नहीं। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, यह सवाल हमें पराजित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं, किंतु जिस चीज की तलाश करते हैं वह हमें नहीं मिलती। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम खुश रहें, उसी में संतोष कर लें। कहता है, समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी भले ही यह दावा कर लें कि उन्हें सब कुछ आता है, कड़ी मेहनत से वे सब कुछ का ज्ञान हासिल कर चुके हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की योजना को समझने में वे असमर्थ ही रहेंगे। श्रोताओ, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की था तक पहुंचा सकते हैं, ईश्वर के रहस्य तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रतापूर्वक मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करे, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को पहचाने, ईश्वर की महिमा को पहचाने जो कि अपरम्पार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को वैटिकन में कोलंबिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री गुस्तावो पेद्रो उरुग्वे से मुलाकात की। पोप से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेद्रो परोलेन एवं वैटिकन विदेश उप सचिव मोनसिनियोर दानियल पाको से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार वैटिकन राज्य सचिवालय में बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और वैटिकन एवं कोलंबिया के बीच अच्छे संबंधों पर संतोष जताया गया। बयान में बताया गया कि बातचीत के मुख्य मुद्दे शांति, मेल मिलाप एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में कलीसिया एवं राज्य के बीच सकारात्मक तथा लगातार सहयोग रहे। इसके अलावा बयान में आगे कहा गया कि बातचीत में कोलंबिया और क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें खासकर झगड़ों, अंतर्राष्ट्रीय सुनियोजित अपराध और जलवायु परिवर्तन के नतीजों पर ध्यान दिया गया। संचार विभाग के संपादकीय निदेशक ने रोम में लियो डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की है, जिसमें साक्षात्कार, संग्रहालय फुटेज एवं तस्वीर शामिल हैं। डॉक्यूमेंट्री को पत्रकार फादर फिलिप हेरेरा, सल्वातोरे चिनेत्सियो और तित्सियाना कंपीसी ने बनाया है और इसकी एडिटिंग जैमे विचकैनो हारो ने की है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस के द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज में 1 जुलाई को हुए धर्मदक्ष अभिषेक को एक फूट डालने वाला कृत्य बताया गया है और साथ ही एक व्याख्यात्मक टिप्पणी में धर्म से बहिष्कार की गंभीर कानूनी प्रतिबंध की जानकारी दी गई है। संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी के धर्माध्यक्षों अल्फोंसो दी गलारेता और बर्नार्ड फेले क्रमशः मुख्याभिषेककर्ता और सह अभिषेककर्ता एवं नव अभिषिक्त धर्माध्यक्ष पास्कल श्रेबर, माइकल गोल्दादे, मिशेल पोइंसनेट दी सिल्वी और मार्क हनापियर को इप्सो फक्तो स्वतः ही लाते सेंटेंस से सजा का सामना करना पड़ा है, जो परमधम पीठ के लिए आरक्षित है क्योंकि उन्होंने एक फूट डालने का काम किया है। 4 पुरोहितों का धर्माध्यक्ष अभिषेक परमधम पीठ के आदेश के बिना और सर्वोच्च अधिकारी पोप की इच्छा के विरुद्ध। यह बात 2 जुलाई को जारी एक आज्ञाप्ति में कही गई है, जिस पर विश्वास के धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस ने हस्ताक्षर किए हैं और उसी विभाग के 2 सचिवों के भी हस्ताक्षर हैं। यह फैसला 1 जुलाई 2026 की सुबह स्विट्जरलैंड के इकोन में हुए अभिषेक समारोह के 24 घंटे बाद आया है। विश्वास के धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग की आज्ञाप्ति यह तय करती है कि अभिषेक में अभिषेककर्ता और अभिषेक पाने वाले दोनों ही तय बहिष्कार में शामिल हैं। यह दर्दनाक अंत लेफेब्रिटो के उस फैसले का नतीजा है जो उन्होंने पोप लियो 14वें की बार बार कही गई इच्छा के खिलाफ लिया है। इस बहिष्कार ने संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को रोम की कलीसिया से अलग कर दिया है। जहां तक लोक धर्मियों की बात है, जो लोग औपचारिक रूप से सोसाइटी के नियमों का पालन करते हैं उन्हें बहिष्कृत माना जाएगा। अधिक जानकारी एक व्याख्यात्मक टिप्पणी में दी गई है, जिसे धर्म से निकालने के आदेश के साथ ही विभाग ने प्रकाशित किया। संत पापा पॉल सिस्टम के समय से लेकर अभी के विभाग में हाल ही में हुई बातचीत तक महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्रे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के सदस्यों को कार्तिक कलीसिया के साथ पूरी तरह से जोड़ने की कई कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। यह स्थिति परमधम पीठ के आदेश के बिना पोप की इच्छा के विरुद्ध और कलीसियाई कानून का खुला उल्लंघन करके किए गए धर्माध्यक्ष अभिषेक से और भी खराब हो गई है। इसलिए यह विभाग उसे सौंपे गए कामों को ईमानदारी से करते हुए यह बताना जरूरी समझती है कि यह काम फूट का कारण बना, जिसके याचकों एवं इसमें शामिल लोक धर्मियों पर कानूनी नतीजे हुए। असल में जैसा कि 1988 में कहा जा चुका है, ऐसी अवज्ञा जिसका मतलब व्यवहारिक रूप से रोमी परमाध्यक्ष को नकारना है, एक फूट डालने वाला काम है। संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी से जुड़े पुरोहित कार्तिक धर्म से फूट में हैं
और इसलिए उन्हें धर्म से बहिष्कृत माना जाएगा। उन लोग धर्मियों के लिए जो औपचारिक रूप से संत पियूस दसवें के सोसाइटी के नियम का पालन करते हैं, उन्हें 1996 में विधायी दस्तावेज के लिए परम धर्म पीठ समिति के व्याख्यात्मक दस्तावेज में बताई गई शर्तों के तहत अलग माना जाएगा और उन्हें कलीसिया से निकाल दिया जाएगा, जो अब लागू हो चुका है। अंत में ईश्वर की पौत्र प्रजा को चेतावनी दी जाती है कि संत पियूस दसवें की याजकीय सोसाइटी के पुरोहितों और धर्माध्यक्षों द्वारा संस्कारों का अनुष्ठान अवैध है और उनके द्वारा दिए गए पाप स्वीकार संस्कार एवं शादी संस्कार अमान्य हैं। कलीसिया एक देखभाल करने वाली माँ की तरह है, उन सभी लोगों का सच्चे स्नेह एवं पूरी चिंता के साथ स्वागत करेगी जो कलीसिया के साथ पूर्ण एकता में रहना चाहते हैं। प्रेरितिक राजदूत उन प्रक्रियाओं का इंतजाम करेंगे जिनका इस्तेमाल धर्माध्यक्ष अलग अलग मामलों में कर सकते हैं। अंत में सभी विश्वासियों से कहा जाता है कि वे रोमी पोप धर्माध्यक्षों और पूरी कलीसिया के साथ मजबूती से जुड़े रहें और संत पियूस दसवें के सोसाइटी द्वारा अर्पित पौत्र मिस्सा एवं अन्य क्रियाकलापों में हिस्सा लेने से बचें। संत पापा पॉल षष्ठम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की बड़ी कोशिशों एवं संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें द्वारा लगाए गए बहिष्कार को हटाने के फैसले और संत पापा फ्रांसिस द्वारा दी गई सुविधाओं एवं परमाध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ किए गए गैर कानूनी अभिषेक के बावजूद सोसाइटी एक बार फिर रोम से अलग हो गई। यह एक मुश्किल इतिहास है जो बड़ी कोशिशों, खुले दरवाजों और दिए गए मौकों से बना है। यह एक दर्दनाक इतिहास है जिसमें दो गंभीर दरारें आईं, जिनकी वजह से महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्रे द्वारा बनाई गई संत पापा पियूस दसवें की आज के सोसाइटी ने खुद को संत पापा से और रोम की कलीसिया से अलग कर लिया है और बिना किसी परमाध्यक्ष आदेश के धर्माध्यक्षों का अभिषेक किया। पिछली 1 जनवरी को हुई दरार के गंभीर नतीजे न केवल महाधर्माध्यक्ष लेफेब्रे के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए बल्कि सभी विश्वासियों के लिए भी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा। मंदिर से जाने के बाद लोगों ने उनका आचरण भुला दिया। यह भी व्यर्थ है। मनुष्य इसलिए अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं यह जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा। वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 9 से लेकर 13 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। वस्तुतः उपदेशक ग्रंथ के उक्त पद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सत्ता या ताकत का अनुचित लाभ उठाने वालों को ये पद फटकार बताते हैं। फिर यह प्रकाशित करते हैं कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने के कारण ही हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब दुष्ट को कुछ समय के लिए सजा नहीं मिलती तो बुराई करने की उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। आज भी यह कोई नई बात नहीं है। कई स्थलों पर, विशेष रूप से सरकारी दफ्तरों में, यही देखने को मिलता है। आज भी विश्व के कई हिस्सों में शासक मनमानी कर रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। श्रोताओं, किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही एवं न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिलता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला माना जाता है। इसके विपरीत भले व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। वे उन ताकतवरों के राज में दुख उठाते हैं जो उन पर अधिकार जताते हैं। सताने वाले अपनी नफरत में और मजबूत होते जाते हैं, जबकि भले लोग दूसरों की दृष्टि में और नीचे गिर जाते हैं। अस्तु श्रोताओं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सुलेमान ने इस ना इंसाफी को व्यर्थ निरूपित किया। तथापि इसके बावजूद वह भरोसा दिलाता है। 8वें अध्याय के 13वें पद में कहता है, ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं।

तदुपरांत आठवें अध्याय के 14वें एवं 15वें पदों में उपदेशक कहता है, पृथ्वी पर एक और बात व्यर्थ है, कुछ धर्मियों को दुष्टों का दंड भोगना पड़ता है और कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। मैं कह चुका हूं यह भी व्यर्थ है, इसलिए मेरी सिफारिश यह है, जीवन में आनंद मनाओ, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह खाए पिए और प्रसन्न रहे। इस संसार में ईश्वर ने उसे जितने दिन दिए उनमें उसके परिश्रम में वह आनंद के साथ रहे। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां राजा सुलेमान अनंत के दृष्टिकोण को भूल चुका था, या फिर अनंत में उसका विश्वास नहीं था। और फिर जिसे अनंत पर विश्वास नहीं, जिसे यह भरोसा नहीं कि धरती पर हमारे इस जीवन के बाद भी जीवन है, तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। और इसी पर विलाप करता है कि इस दुनिया के स्त्री पुरुषों को कष्ट क्यों कर भोगना पड़ता है। श्रोताओं, यह सवाल बाइबल धर्म ग्रंथ में निहित अय्यूब के ग्रंथ का सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब लगभग नामुमकिन था। इसका जवाब तो बस उन्हीं को मिल सकता है जो अनंत जीवन में विश्वास करते हुए इस जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार निभाते हैं। उपदेशक यह भी कहता है कि कुछ दुष्टों को धर्मियों का पुरस्कार मिल जाता है। सवाल करता है कि बुरे कर्म करने वाले खुश क्यों रहते हैं, उन पर आशीर्वाद क्यों बरसता रहता है, नाकाबिल लोगों के साथ अच्छाई क्यों दिखाई जाती है। और इन्हीं सवालों की मजबूती उसे यह कहने पर मजबूर कर देती है कि जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। अस्तु परामर्श देता है कि जिंदगी के बुरे हालातों का भी मनुष्य सदुपयोग करे, परिश्रम करे और जीवन का आनंद उठाए, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। किंतु श्रोताओं, उपदेशक भूल गया था कि ऐसे सवालों का जवाब ईश्वर की दया पर निर्भर रहता है। ईश्वर दया सागर हैं, वे पापियों का बहिष्कार नहीं करते बल्कि उन्हें पुनः सत्य के रास्ते पर लौट आने का मौका देते हैं। आगे आठवें अध्याय के अंतिम यानी कि 16वें पद में उपदेशक कहता है, जब मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने और पृथ्वी पर मनुष्य का कार्यकलाप समझने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि मनुष्य भले ही दिन रात परिश्रम करता रहे किंतु पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है वह उसमें ईश्वर का उद्देश्य समझने में असमर्थ है। वह कितना ही परिश्रम क्यों न करे किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। यदि ज्ञानी यह समझने का दावा करता है तो भी वह उसका पता लगाने में बिल्कुल असमर्थ है। श्रोताओं, जिंदगी की बहुत अधिक भागदौड़ हमें यह पूछने पर मजबूर कर देती है कि यह भागदौड़ हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या मतलब है और इसका कोई मतलब है भी या नहीं। हम कितने ही ज्ञानी क्यों न हों, यह सवाल हमें पराजित कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम ढूंढते रह जाते हैं किंतु जिस चीज की तलाश करते हैं वह हमें नहीं मिलती। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में हम खुश रहें, उसी में संतोष कर लें। कहता है, समझदार लोग और कथित बुद्धिमानी भले ही यह दावा कर लें कि उन्हें सब कुछ आता है, कड़ी मेहनत से वे सब कुछ का ज्ञान हासिल कर चुके हैं, किंतु ईश्वर के रहस्य को, ईश्वर की योजना को समझने में वे असमर्थ ही रहेंगे। श्रोताओं, न तो हमारा ज्ञान, न ही हमारा हुनर और न ही हमारे ढेर सारे अनुभव हमें ईश्वर की था तक पहुंचा सकते हैं, ईश्वर के रहस्य तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उपदेशक का परामर्श है कि विनम्रता पूर्वक मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करे, सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामर्थ्य को पहचाने, ईश्वर की महिमा को पहचाने जो कि अपरम्पार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को वैटिकन में कोलंबिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री गुस्तावो पेद्रो उरुग्वे से मुलाकात की। पोप से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ने वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेद्रो परोलेन एवं वैटिकन विदेश उप सचिव मोनसिनियोर दानियल पाको से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार वैटिकन राज्य सचिवालय में बातचीत सौहार्दपूर्ण रही और वैटिकन एवं कोलंबिया के बीच अच्छे संबंधों पर संतोष जताया गया। बयान में बताया गया कि बातचीत के मुख्य मुद्दे शांति, मेल मिलाप एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में कलीसिया एवं राज्य के बीच सकारात्मक तथा लगातार सहयोग रहे। इसके अलावा बयान में आगे कहा गया कि बातचीत में कोलंबिया और क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें खासकर झगड़ों, अंतर्राष्ट्रीय सुनियोजित अपराध और जलवायु परिवर्तन के नतीजों पर ध्यान दिया गया। संचार विभाग के संपादकीय निदेशक ने रोम में लियो डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की है, जिसमें साक्षात्कार, संग्रहालय फुटेज एवं तस्वीर शामिल हैं। डॉक्यूमेंट्री को पत्रकार फादर फिलिप हेरेरा, सल्वातोरे चिनेत्सियो और तित्सियाना कंपीसी ने बनाया है और इसकी एडिटिंग जैमे विचकैनो हारो ने की है। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस के द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज में 1 जुलाई को हुए धर्मदक्ष अभिषेक को एक फूट डालने वाला कृत्य बताया गया है और साथ ही एक व्याख्यात्मक टिप्पणी में धर्म से बहिष्कार की गंभीर कानूनी प्रतिबंध की जानकारी दी गई है। संत पियूस 10वें की याजकीय सोसाइटी के धर्माध्यक्षों अल्फोंसो दी गलारेता और बर्नार्ड फेले क्रमशः मुख्याभिषेककर्ता और सह अभिषेककर्ता एवं नव अभिषिक्त धर्माध्यक्ष पास्कल श्रेबर, माइकल गोल्दादे, मिशेल पोइंसनेट दी सिल्वी

इकोन में हुए अभिषेक समारोह के 24 घंटे बाद आया है। विश्वास के धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग की आज्ञाप्ति यह तय करती है कि अभिषेक में अभिषेककर्ता और अभिषेक पाने वाले दोनों ही तय बहिष्कार में शामिल हैं। यह दर्दनाक अंत लेफेब्रिटो के उस फैसले का नतीजा है जो उन्होंने पोप लियो 14वें की बार बार कही गई इच्छा के खिलाफ लिया है। इस बहिष्कार ने संत पियूस 10वें की याज के सोसाइटी के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को रोम की कलीसिया से अलग कर दिया है। जहां तक लोक धर्मियों की बात है, जो लोग औपचारिक रूप से सोसाइटी के नियमों का पालन करते हैं उन्हें बहिष्कृत माना जाएगा। अधिक जानकारी एक व्याख्यात्मक टिप्पणी में दी गई है जिसे धर्म से निकालने के आदेश के साथ ही विभाग ने प्रकाशित किया। संत पापा पॉल सिस्टम के समय से लेकर अभी के विभाग में हाल ही में हुई बातचीत तक महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्रे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के सदस्यों को कार्तिक कलीसिया के साथ पूरी तरह से जोड़ने की कई कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। यह स्थिति परमधम पीठ के आदेश के बिना पोप की इच्छा के विरुद्ध और कलीसियाई कानून का खुला उल्लंघन करके किए गए धर्माध्यक्ष अभिषेक से और भी खराब हो गई है। इसलिए यह विभाग उसे सौंपे गए कामों को ईमानदारी से करते हुए यह बताना जरूरी समझती है कि यह काम फूट का कारण बना जिसके याचकों एवं इसमें शामिल लोक धर्मियों पर कानूनी नतीजे हुए। असल में जैसा कि 1988 में कहा जा चुका है, ऐसी अवज्ञा जिसका मतलब व्यवहारिक रूप से रोमी परमाध्यक्ष को नकारना है, एक फूट डालने वाला काम है। संत पियूस 10वें की याज के सोसाइटी से जुड़े पुरोहित कार्तिक धर्म से फूट में हैं और इसलिए उन्हें धर्म से बहिष्कृत माना जाएगा। उन लोक धर्मियों के लिए जो औपचारिक रूप से संत पियूस 10वें के सोसाइटी के नियम का पालन करते हैं, उन्हें 1996 में विधायी दस्तावेज के लिए परमधम पीठ समिति के व्याख्यात्मक दस्तावेज में बताई गई शर्तों के तहत अलग माना जाएगा और उन्हें कलीसिया से निकाल दिया जाएगा, जो अब लागू हो चुका है। अंत में ईश्वर की पौत्र प्रजा को चेतावनी दी जाती है कि संत पियूस 10वें की याज के सोसाइटी के पुरोहितों और धर्माध्यक्षों द्वारा संस्कारों का अनुष्ठान अवैध है और उनके द्वारा दिए गए पाप स्वीकार संस्कार एवं शादी संस्कार अमान्य हैं। कलीसिया एक देखभाल करने वाली माँ की तरह है, उन सभी लोगों का सच्चे स्नेह एवं पूरी चिंता के साथ स्वागत करेगी जो कलीसिया के साथ पूर्ण एकता में रहना चाहते हैं। प्रेरितिक राजदूत उन प्रक्रियाओं का इंतजाम करेंगे जिनका इस्तेमाल धर्माध्यक्ष अलग अलग मामलों में कर सकते हैं। अंत में सभी विश्वासियों से कहा जाता है कि वे रोमी पोप धर्माध्यक्षों और पूरी कलीसिया के साथ मजबूती से जुड़े रहें और संत पियूस 10वें के सोसाइटी द्वारा अर्पित पौत्र मिस्सा एवं अन्य क्रियाकलापों में हिस्सा लेने से बचें। संत पापा पॉल सिस्टम एवं संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की बड़ी कोशिशों एवं संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा लगाए गए बहिष्कार को हटाने के फैसले और संत पापा फ्रांसिस द्वारा दी गई सुविधाओं एवं परमाध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ किए गए गैर कानूनी अभिषेक के बावजूद सोसाइटी एक बार फिर रोम से अलग हो गई। यह एक मुश्किल इतिहास है जो बड़ी कोशिशों, खुले दरवाजों और दिए गए मौकों से बना है। यह एक दर्दनाक इतिहास है जिसमें दो गंभीर दरारें आईं जिनकी वजह से महाधर्माध्यक्ष मार्सेल लेफेब्रे द्वारा बनाई गई संत पापा पियूस 10वें की याज के सोसाइटी ने खुद को संत पापा से और रोम की कलीसिया से अलग कर लिया है और बिना किसी परमाध्यक्ष आदेश के धर्माध्यक्षों का अभिषेक किया। पिछली 1 जनवरी को हुई दरार के गंभीर नतीजे न केवल महाधर्माध्यक्ष लेफेब्रे के धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए बल्कि सभी विश्वासियों के लिए भी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.avolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।